0: रेडियो नगर 90.4 एफएम आवाज तुमचा।
1: तुम्ही ऐकत आहात स्नेह वार्ता फक्त रेडियो नगर 90.4 एफएम वर।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।
1: जज्जा।

मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा।

0: रेडियो नगर 90.4 एफएम आवाज तुमचा।
1: तुम्ही ऐकत आहात नगर डायरी फक्त रेडियो नगर 90.4 एफएम वर। श्रोते हो नमस्कार, आजच्या नगर डायरी शो मध्ये आपण ऐकणार आहात जैन साधिका प्राध्यापक डॉक्टर प्रागभा विराट यांची मुलाखत। त्यांच्याशी संवाद साधला आहे भूषण देशमुख यांनी।
2: श्रोते हो नमस्कार, मी आहे भूषण देशमुख आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 एफएम आवाज तुमचा। मंडळी, आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेल्या पाहुणे आहेत जैन साधिका प्राध्यापिका डॉक्टर प्रागभा विराट। व्यावहारिक रूप से आध्यात्मिक असा त्यांचा हा मुख्य विषय आहे आजच्या गप्पांचा। साध्वी विराट यांच्या त्या सुशिष्य आहेत आणि गेली काही वर्ष मोटिवेशनल स्पीकर म्हणून अनेक ठिकाणी त्या व्याख्यानं देत असतात। शाळा कॉलेजमध्ये त्या जातात, मुलांशी संवाद साधतात, त्याचबरोबर प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये देखील त्या सक्रिय आहेत। चरम मंगल या मासिकाच्या त्या प्रबंध संपादिका आहेत। त्याच्याही आधी म्हणजे 18 वर्ष त्यांनी हिंदी रंगमंचावर अभिनेत्री म्हणून आपला ठसा उमटवलेला आहे। अनेक विषयांमध्ये त्यांना रुची आहे, त्यांनी डॉक्टरेट केलेली आहे आणि व्यावहारिक मनोचिकित्सा हा त्यांचा अभ्यासाचा एक महत्त्वाचा विषय राहिलेला आहे। डॉक्टर प्रागभा विराट यांचं मी स्वागत करतो आपल्या सगळ्यांच्या वतीने। नमस्ते।
3: धन्यवाद। नमस्ते।
2: एक बहुत बड़ा जो आपका दायरा है, आपका स्टडी का जो विषय, आपने जो भी अब तक स्टडी किए हैं, रिसर्च किए हैं, तो हम शुरुआत करते हैं आपका जो स्टेज का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो वहाँ से लेके जैन साध्वी तक ये प्रवास कैसे हुआ?
3: अगर मैं ये कहूँ कि रंगमंच स्वयं अपने आप में एक साधना है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये अनुभव से कह रही हूँ। तो हुआ यूँ कि जब हम छोटे थे, तो आप समझ सकते हैं कि आज से 30-35 साल पहले फीमेल चाइल्ड होना या एक स्त्री होना, लड़की होना, तो समाज में एक स्त्री और पुरुष का जो भेद रहा छोटे शहरों में, ये हमने उस समय भी भोगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे परिवार में हमें वो भेदभाव देखने को मिला, लेकिन समाज में वो एक जरा सा रहा।
2: आप राजस्थान से?
3: राजस्थान जोधपुर शहर से। तो वहां पर हमारे माता पिता, दादा दादी, एक बहुत ही खुले माहौल में उन्होंने हमको परवरिश दी और बहुत प्रेम पूर्वक उन्होंने परवरिश दी। बहुत साधारण सरल स्वभाव के सब रहे, परंतु शायद जो समाज को देखते हुए एक भीतर कह सकते हैं कि बहुत सारे सवाल थे, जवाब थे, लेकिन लड़की होने के कारण और खासकर जैन व्यावसायिक परिवारों में उस समय कला और मंच का राजस्थान में उतना प्रोत्साहन नहीं है जैसे महाराष्ट्र बंगाल में आपको मिलेगा, लेकिन राजस्थान में उतना नहीं है। तब हम धार्मिक कार्यक्रमों में ऐसे मंच पर जाते रहे और तब कहीं एक ऐसे ही मुलाकात किसी रंगमंच के निर्देशक से हुई और लगा कि हमें मंच पर जाना चाहिए, परंतु रंगमंच के कलाकारों को एक सम्मानजनक दृष्टि से उस समय भी नहीं देखा जाता था, खासकर मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ। और ऐसे में हुआ ये कि मजाक मजाक में हमारे निर्देशक ने कह दिया कि कोई बात नहीं, अभी नहीं कर रही हो तो क्या हो गया, अभी तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें रोक रहे हैं, तुम ना शादी के बाद करना। और मैं हंसी उन पर, ये बड़े मजाक की बात कर रहे हो, जहाँ शादी से पहले माता पिता नहीं हमें परमिशन दे रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, शादी के बाद तो कौन अपनी बहू को मंच पर देखना चाहेगा। पर कुछ सहयोग, कुछ भी कह लें आप, वो ऐसे बने कि मैंने अपने रंगमंच की शुरुआत, पहला रंगमंच पर जो नाटक खेला वो विवाह के पश्चात खेला। और वो सिर्फ एक बात प्रमाणित करने के लिए कि मुझे एक बार रंगमंच पर नाटक खेलना है। और जब हम रंगमंच पर गए तो वो नाटक, मैं थोड़ी चर्चा जरूर उस नाटक की करूंगी, मराठी ही रंगमंच के लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, उनका एक नाटक है कोमल गांधार। तो उन्होंने कहा कि जब इसको एक ही नाटक, मुझे बस एक ही नाटक करना था, वो मन की एक अधूरी इच्छा पूरी करनी थी। एंड वो जब हमने वो नाटक खेला और गांधारी का मेन रोल उन्होंने दिया कि आप ये पात्र पढ़िए, और उस पात्र को पढ़ते हुए भीतर बहुत कुछ बदला। और मैं कहूंगी कि एक लाइन में अगर मैं उस पूरे कोमल गांधार को समअप करूं, तो एक प्रश्न ने मुझे बहुत आंदोलित किया कि क्या कारण था कि कुंती के 5 पुत्र गांधारी के 100 पुत्रों पर भारी पड़े। और उस पूरी यात्रा के दौरान मेरे अंदर की स्त्री एक इवॉल्व हुई। फिर कुछ ऐसे संयोग बने कि मेरे पास फिर वैसे नाटक आए जो स्त्री पात्र को एक बिल्कुल नए आयाम से देखते थे, और ये यात्रा आगे चलती गई। कट्टस जो एकल एक पात्रीय स्त्री नाटक लिखा गया था और जिसे भारत भर में सबसे पहले खेलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, उसने फिर मेरी अंदर की जो स्त्री है उसे एक नए, कहते हैं ना, एक नया कलेवर खोला। फिर उसके बाद मिला मुझे सुरेंद्र वर्मा का सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण,
2: बहुत मशहूर नाटक,
3: बहुत मशहूर नाटक और बहुत बोल्ड नाटक। और पूरा नाटक करते हुए अंदर बहुत उद्वेलन हुआ, बहुत कुछ ऐसे अपने स्वयं के रूप देखे जो शायद आमतौर पर एक गृहिणी नहीं देख पाती। और ये यात्रा चलती गई, बहुत सारे नाटक खेले और अपने आप को एक्सप्लोर करती गई, अपने आप को खोजती गई। और मेरे जो गुरु रहे, रंग गुरु डॉक्टर मदन मोहन माथुर, प्रोफेसर मदन मोहन माथुर, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वाकई हमें रंगमंच केवल शोज के लिए नहीं करना सिखाया। वो एक जो लाइन पंक्ति एक नाटक का कलाकार बोलता है कि जीवन को नाटक की तरह जियो और नाटक को जीवन की तरह खेलो। ये पंक्ति की शुरुआत मेरी नाटक से हुई। मैंने नाटक को जीवन की तरह खेला और इतना जीवंत खेला कि मुझे दर्शकों का अथाह प्रेम मिला। तो इस पंक्ति की आधी जो है वो मैंने नाटक के दौरान जी, और वो करते करते मैं कहूँगी मेरी साधना वहीं से शुरू हो गई। मेरे भीतर की जितनी कुंठाएं, जितनी ग्रंथियां, जो एक आम साधारण स्त्री कह लो या मैं कहूँगी एक साधारण व्यक्ति के भीतर होती है, वो ग्रंथियां उन नाटकों का अध्ययन करते हुए खुलती गई। एक व्यक्ति के भीतर की बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनका मैंने साक्षात्कार किया, जो मैं पात्र खेल रही हूँ और जो मैं ओरिजिनली हूँ, जो मेरा होनापन है, इन दोनों के बीच के द्वंद्व को मैंने जिया। तो वो जब आधा खेला, उसी दौरान मुझे मेरे गुरु मिले, विराट गुरु जी, और आत्मज्ञानी पुरुष हुए, स्वयं को उपलब्ध गृहस्थ वेश में मिले, और उन्होंने भी मेरे नाटक देखे। और हर नाटक के भीतर से वो अध्यात्म गुजरता गया। और जो इस पंक्ति का दूसरा हिस्सा है कि जीवन को नाटक की तरह खेलो, ये विराट गुरुजी ने सिखाया। तो नाटक मंच पर चल रहा था जिसे मैं जीवन की तरह जी रही थी, और जीवन को मैं नाटक की तरह जी रही थी, जहां मैं एक पुत्री, एक माँ, एक पत्नी, एक सामाजिक अलग अलग भूमिकाएं, रोल्स प्ले कर रही थी। तो ये जो बैलेंस हुआ, उसके बाद वेश बदलने का तो हो गया। तो ये एक यात्रा रही।
2: आपने पीएचडी भी की नाटक के ऊपर?
3: पीएचडी हिंदी नाटकों पर,
2: हिंदी नाटकों पर।
3: और सुरेंद्र वर्मा एक ऐसे लेखक हुए जिन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों पर नाटक अधिक लिखे, और हम अक्सर इन नाटकों को बहुत सतही स्तर पर पढ़ते हैं, जहां पर हमें मात्र स्त्री पुरुष संबंध, जैसे आज का सोशल मीडिया उसको प्रोजेक्ट करता है, उस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन देखा जाए तो हमारी सृष्टि का जो मूल आधार है वो ये स्त्री पुरुष संबंध ही तो है, जिससे सृष्टि रोज नित नए आकारों में, नित नए रूपों में जन्म लेती है। तो जीवन को जन्म देने वाला ये स्त्री पुरुष संबंध ही है, इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको जिया जा सकता है, और इसके हर आयाम को अनेकांत दृष्टि से देखना होगा

0: सकती हूँ पूर्ण अनुभव के साथ, समग्र अनुभव के साथ, कि अगर मैंने कोमल गांधार नहीं किया होता तो शायद मैं वैसी माँ नहीं बनती जैसी मैं बाद में बनी। मेरे मातृत्व का वो फेज या वो आयाम उजागर ही नहीं होता अगर मैंने कोमल गांधार नहीं खेला होता। तो इन नाटकों ने मेरे जीवन को कई अर्थों में बदला। एक जो भीतर की सोई हुई योग्यता है, व्यक्तित्व है, उसके कई आयाम इन नाटकों ने खोले। और तब एक चीज समझ में आई कि अध्यात्म जीवन से अलग नहीं है। वो कुछ क्रियाएं, कुछ परंपराएं फॉलो कर लिया या वेश बदल लिया, वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म अंदर का विज्ञान है, और जिसने अंदर को जान लिया उसने बाहर को भी जान लिया, फिर उसे बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। तो अंदर की जो सृष्टि बनती बिगड़ती है रोज, उसको पूरी तरह से जानने का मौका अध्यात्म देता है। और जो भीतर की सृष्टि है उसको जब हम बाहर खेलते हैं, वो हमारा समाज है, वो नाटक है जो हम रोज खेलते हैं।
1: जैन शादी का बनने का निर्णय कब लिया आपने?
0: देखिए, मैं अगर ये कहूँ बनने का निर्णय, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका, और सही कहूँ तो मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। हुआ बस इतना कि 2009 में पूज्य विराट गुरुदेव मिले। उससे पहले तक मेरे परिवार ने मुझे कभी किसी संप्रदाय में जाने से रोका नहीं। जैन में कम्युनिटी में आप वाकिफ होंगे कि बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो मेरे परिवार ने मुझे किसी संप्रदाय से बांधा नहीं। और मेरे भीतर बहुत प्रश्न थे, बहुत बहुत प्रश्न थे। कुछ प्रश्न अध्यात्म में सामाजिक प्रश्न हुए, लेकिन अध्यात्म से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, अपने अस्तित्व से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न भीतर थे। और मैं कई साधु साधियों के पास गई, कुछ ने जवाब दिया, कुछ ने नहीं जवाब दिया, कुछ ने रोका, कुछ ने टोका। तो एक फेज ऐसा आ गया, मैं कहूँगी लगभग 2001 से लगाकर 2008 तक, जहाँ मैं किसी साधु संत के पास नहीं गई। मैंने स्थानक में, मंदिर में किसी के पास जाना बंद कर दिया कि नहीं मिल रहे मुझे मेरे जवाब, मुझे मेरे अंदर के सवालों के जवाब चाहिए, मुझे मान्यताएं और धारणाएं नहीं चाहिए, मुझे उन सवालों का जवाब चाहिए जो मेरे भीतर को शांत करे। और तब शायद गुरु स्वयं शिष्य को ढूंढ लेता है, क्योंकि शिष्य में इतनी औकात नहीं कि वो गुरु को ढूंढ पाए। पर पुकार थी, भीतर की पुकार थी, और वो पुकार सृष्टि से उत्तरित हुई। और पुकार ऐसी थी कि बस या तो मिले या ना ही मिले, अब मुझे चाहिए ही नहीं, अगर नहीं दे रहा है तो नहीं चाहिए। तब विराट गुरुदेव मिले, और उन्होंने बिना कहे, बिना पूछे, मतलब तभी समझ में आया कि सच्चा गुरु वही होता है कि आप जब उस गुरु के पास जाते हो तो आपके भीतर वो सवालों का जो जंगल है ना, वो अपने आप शांत हो जाता है। फिर जो थोड़े बहुत जिज्ञासाएं बची, वो गुरुजी से हमने कभी पूछी नहीं। हम उनके पास जाते और या तो पेपर पर लिखा हुआ उसका उत्तर होता, या बोलता ले लिख, और वो उसी प्रश्न का उत्तर होता जो मेरे भीतर चल रहा था, मैंने पूछा नहीं। 3 साल मैं कहूँगी देह रूप में गुरुदेव का सानिध्य मिला, वो भी बहुत कम, दिन रात नहीं मिला, लेकिन 3 सालों में पता नहीं उन्होंने क्या किया। वो कहते हैं ना, भीतर का पूरा सिस्टम बदल दिया। और वो सिस्टम इस तरह से बदला कि मुझे भी नहीं पता चला कि मैं बदल गई, लेकिन मेरे आसपास के लोगों को लग रहा था। वेश बदलने का कभी कोई आग्रह था नहीं, ना मेरा था ना गुरुदेव का था, पर कुछ ऐसे जीवन में निमित्त बने 2016 में कि उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने 2012 में देह छोड़ दी थी, और तब वैभवश्री जी ने कहा कि चलो अब वेश बदल लेते हैं, तब उन्होंने वेश बदल दिया। पर मैं कहूँगी कि शिष्या मैं विराट गुरुदेव की हूँ। मैं कहूँगी कि गुरु शिष्य के बीच जो दीक्षा होती है, जो गुरु एक दृष्टि देता है, दीक्षा वो एक अक्षी देता है, वो एक दृष्टि देता है, वो विराट गुरुदेव ने कर दिया था। यहाँ तक कि जो मेरा वर्तमान नामकरण है वो भी विराट गुरुदेव का ही दिया हुआ है। तो उन्होंने तभी 2012 में ही बोल दिया था ये आज से प्रागभा है, तो प्रागभा नाम उन्हीं का दिया हुआ है। वेश परिवर्तन 2016 में हो गया, तो ये मात्र एक तरह से वेश परिवर्तन हुआ, लेकिन अंदर की सिस्टम तो बहुत पहले बदल गया था।
1: जैन धर्म एक साइंटिफिक धर्म है
0: जी,
1: कोरोना पीरियड में हमने

0: देखा कि बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, तत्व हैं, जो जैन धर्म में, वो बहुत काम में आए
1: जी।
0: और बहुत सारे लोगों ने उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया। आपका जैन धर्म की तरफ देखने का रवैया साइंटिफिक है, जैसे कि बहुत धर्म कर्मकांड से जुड़े होते हैं, पुराने रीति रिवाज होते हैं, उसको बदलने की जरूरत कभी कभी महसूस होती है। आप क्या समझते हो जैन धर्म क्या है?
1: देखिए, मैं कहूंगी कि जैन धर्म भी है और जैन दर्शन भी है, है ना। धर्म इस दृष्टि से कि वो वस्तु का स्वभाव है। जब भी आत्मा अपने स्वभाव में है, वी भाव में नहीं है, यानी विपरीत भाव में नहीं है, तो वो धर्ममय है। तो जैन जो धर्म है वो समण धर्म है। एक्चुअली इसका जो पुराना, अगर आप सूत्रों में, शास्त्रों में देखें, इतिहास में, तो ये आर्हत धर्म से पुकारा गया या समण धर्म नाम आता है। जैन शब्द कुछ 500 वर्ष पहले आया कि भाई जो जिन का उपासक है वो जैन है, क्योंकि बुद्ध के उपासकों को बौद्ध कहा गया, शिव के उपासकों को शैव, तो इस तरह से जिन के उपासकों को जैन कह दिया गया। पर जो शब्द मिलता है वो आर्हत धर्म, समण धर्म मिलता है। समण धर्म यानी समता का साधक है, समभाव का साधक है, वो पोल्स पर नहीं जाता। तो मैं अगर धर्म की बात करूं तो जब भी एक व्यक्ति अपने स्वभाव में है तो वो धर्म में है। और जहां तक दर्शन की बात है, तो जब दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। अब मैं विज्ञान की बात करूं तो अगर मैं विज्ञान को मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखूं, उसके पहले मैं चाहूंगी कि हम विज्ञान शब्द को एक नए आयाम से समझें। विज्ञान, विशेष ज्ञान, राइट। तो किसी भी चीज का विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, गहराई से जब हम ज्ञान, उस ज्ञान में उतरते हैं, तो वो विज्ञान है। लेकिन अगर मैं जैन, जैसा आजकल सभी लोग कर रहे हैं कि भाई जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, तो हम जैन धर्म के सूत्रों को मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न जियोलॉजी, उस पर फिट बिठाने का प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखना चाहूंगी कि जैन धर्म वाकई विज्ञान है। कैसे विज्ञान है कि हर सूत्र इतना गहन है कि आप एक सूत्र के भी तह में चले जाएं, उसके विशेष ज्ञान में चले जाएं, तो आप संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान कर सकते हैं। तो मैं उस दृष्टि से कहूंगी कि यस, हर सूत्र में विज्ञान है। हमें उस विज्ञान को खोलना है, हमें उस विज्ञान को खोजना है और खोज कर उसे अनुभव में लाना है। इट्स नॉट ओनली जैन धर्म को हम मात्र जीववाद तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। जैन धर्म आपको जीवन जीने की दृष्टि देता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जैसे मनोविज्ञान, आजकल साइकोलॉजी बड़ी चलन में है, मेंटल वेलबींग बहुत चल रहा है, एंड यू नो आजकल माइंडफुलनेस और इनकी बातें बड़ी की जा रही है। महावीर का पूरा धर्म, महावीर का पूरा दर्शन मन का विज्ञान है। महावीर ने कहा अनेक चित्ता खलु इयम पुरे से, यानी जो मॉडर्न साइकोलॉजी आज जो कहती है कि ये मनुष्य अनेक चित्ता है, ये पुरुष अनेक चित्तों वाला है। पुरुष यानी मन, ये अनेक चित्तों वाला है। और आज मॉडर्न साइकोलॉजी कह रही है कि मैन इज पॉलीसाइकिक। तो इन अनेक चित्तों को जब हम जान लेते हैं कि हमारा कौन सा चित्त कहाँ भटक रहा है, क्यों भटक रहा है, रीजन जान लिया, और जब हम उसे एक चित्ता कर पाएंगे तो हम खुद को जान पाएंगे। तो इन मन के चित्तों को जानने का विज्ञान जैन दर्शन आपको देता है। तो मैं इस दृष्टि से कहूंगी कि जैन धर्म वाकई वैज्ञानिक है। आप गणित ले लीजिए, आप पुद्गल का पूरा विज्ञान यानी मैटर साइंस ले लीजिए, देन आप पूरी बायोलॉजी जो है वो ले लीजिए, एक अलग दृष्टि से जैन दर्शन में कहा गया और वो इतना क्लैरिटी के साथ कहा गया। मजे की बात देखिए, महावीर ने कहा कि जीवन छह काय में है, छह काय में जीवन है, यहाँ तक कि पानी में स्वयं जीवन है। अब आज जो विज्ञान प्रूव कर रहा है वो क्या प्रूव कर रहा है कि पानी में जीव है, राइट। पर महावीर ने ये नहीं कहा पानी में जीव है, महावीर ने कहा पानी स्वयं एक लिविंग बीइंग है, पानी स्वयं जीव है। वहां तक अभी तक साइंस पहुंच ही नहीं पाया है, खाली जहां तक मैं नाम भूल रही हूँ, जापान का एक साइंटिस्ट है, उसने ये बताया है कि पानी मेमोरीज को स्टोर कर सकता है, स्मृतियों को सुरक्षित रख सकता है। इसका अर्थ है कि उसके भीतर जीवन है।
0: हम पंचमहाभूत कहते हैं।
1: यस, तो ये षटकाय है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति जगत और त्रस प्राणी जगत, ये संपूर्ण में जीवन है। ये महावीर ने तब खोज की, और वो खोजा उन्होंने कोई बाहरी उपकरणों से नहीं, खोजा कैसे, भीतर उतर कर। और तब महावीर कह पाए कि जिसने भीतर को जान लिया उसने बाहर को भी जान लिया। तो इन अर्थों में जैन दर्शन वाकई बहुत गहन वैज्ञानिक धर्म है, लेकिन अगर हम उसे विज्ञान, आधुनिक विज्ञान की धाराओं में, शाखाओं में फिट बिठाने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत उलझन में जाएंगे।
0: समय के साथ कुछ बदलाव आते हैं हमारे जीवन में
1: जी,
0: हमारे तरीके बदल जाते हैं, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आते हैं। धर्म ऐसी चीज है, लोग डरते हैं, थोड़े रेस्ट्रिक्शन होता है, मन में कोई आशंका होती है। धर्म में बदलाव आना चाहिए क्या? प्रिंसिपल तो वही रहेंगे, लेकिन जो फिजिकल हम भौतिक कहते हैं, भौतिक बदलाव, जैसे पहले कहा गया था कि पैदल ही आपको चलना है, अभी हम व्हीकल यूज करते हैं, ऐसे कई बदलाव जो हमें स्वीकार्य चाहिए, आपकी सोच क्या है?
1: बिल्कुल, देखिए धर्म तो वही रहेगा क्योंकि वस्तु का स्वभाव है। मैं इसको थोड़ा सा एक शब्द ऐड करना चाहूंगी, धर्म की समाचारी में बदलाव युगानुरूप होना ही चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट बदलेगा है ना। मतलब आप देखिए, जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के समय जो जीवन था, उस समय आदिम जीव था, वो पेड़ से जो मिलता था वो खा लेता था। प्रभु ऋषभ ने तब असी मसी और कृषि का ज्ञान दिया। महावीर प्रभु तक आते आते युग बदल गए, बीच में 22 और तीर्थंकर आए, महावीर 24वें थे, पूरा युग बदल चुका था, तब का वातावरण, तब का युग अलग था। तो उन्होंने प्रवृत्ति का नहीं, निवृत्ति का ज्ञान दिया। प्रभु ऋषभ ने प्रवृत्ति का ज्ञान दिया और इन्होंने बिल्कुल विपरीत, निवृत्ति का ज्ञान दिया। मूल धर्म वही था, समण धर्म वही रहा, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है, जो अभिव्यक्ति है, वो युग के अनुरूप बदली। तो जब भी हमें धर्म के स्वरूप को डे टू डे लाइफ के व्यवहारिकता में देखना होगा, हमें युग को कंसिडर करना ही पड़ेगा। भाई आज जैसे देखिए, हम सोशल मीडिया, इंटरनेट का जमाना है, टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी महावीर प्रभु के सामने उस समय नहीं विकसित हुई थी। तो महावीर प्रभु ने इस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना या इसके डूज एंड डोंट्स उस समय वो कैसे बताते, क्योंकि वो जनता जानती नहीं थी। और कभी भी तीर्थंकर अनावश्यक नहीं बोलते, वो जो सामने उनसे जिज्ञासा है वो उसी का समाधान देते हैं। अब आज के समय में युग बदल गए, आज रहन सहन बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, तो धर्म का मूल तत्व तो वही रहेगा, लेकिन साधना भी वही रहेगी क्योंकि व्यक्ति वही है। बाहर के उसमें हमें युगानुरूप प्रेजेंटेशन करना ही होगा, और समाचारी में सुविधा ना रहे लेकिन साधनों का उपयोग, अगर हमें वाकई, हमारा मंतव्य ये है कि हमें धर्म का ये जो दर्शन का स्वरूप है, ये अगर किसी के भीतर भाव है कि मुझे बहुत लोगों को ये समझाना है, जो मुझे मिला है वो लोगों तक बांटना है, जैसे मेरा ये भाव रहा जब मैं गुरुदेव से मुझे ज्ञान मिला, तो मेरे भीतर एक बहुत ये कांक्षा रही, मैं इसे बिल्कुल कन्फेस करूंगी, स्वीकार करूंगी, कि मेरे भीतर ये भाव रहा कि मुझे जो मिला है मुझे लोगों तक बांटना है, और जब बांटना है तो मुझे कुछ साधनों का उपयोग भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसे साधु साध्वी भी हैं जो आत्मकल्याण के लिए इस मार्ग पर हैं, उनका ये मंतव्य, ये भाव ही नहीं है कि हमें लोगों तक पहुंचना है, वो कह रहे हैं हमें अपनी आत्म साधना करनी, तो वो शायद उन साधनों का उपयोग ना करें। लेकिन अगर हमें भाव है, जग गए, हमारे कुछ शायद ऋणानुबंध है, कर्म है कि हमें ये कार्य करना है, एक निमित्त रूप में ज्ञानियों का ज्ञान पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मैं अगर ये सोचूं कि नहीं, मुझे तो विहार ही करना है, मुझे और वो सारे रिचुअल्स जो 200 साल पहले चल रहे थे वो फॉलो करने हैं, तो मैं आज की इस समय की चाल में बहुत पीछे रह जाऊंगी। तो अगेन, ये सबका व्यक्तिगत निर्णय है कि वो किस स्वरूप में समाज के साथ इंटरैक्ट करना चाहता है। तो अभिव्यक्ति के माध्यम, अभिव्यक्ति के साधन दोनों ही बदलते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है।
0: धर्म एक ऐसी अभी बात हो गई जो अभी पॉलिटिकल एंगल से उसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल होता है। धर्म असल में क्या है वो उनको पता ही नहीं, वो जिसे धर्म कहते हैं वो कुछ अलग ही है, और बहुत विद्वेष पैदा हो रहा है, झगड़े बढ़ रहे हैं, लोग बांट रहे हैं अलग अलग। क्या होगा आगे?
1: अभी आगे क्या होगा उसकी तो मैं क्या ही चर्चा करूं, लेकिन वर्तमान में क्या हो सकता है ना, हम उस पर जरूर चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान को अगर हम अपनी तरफ से, मैं बदलने की भी बात नहीं कहूंगी, लेकिन अगर हम वर्तमान में जीना, उसमें जो अपने प्रयास है वो कर पाए, तो भविष्य निश्चित रूप से बदल सकता है। अब ऐसे में मैं बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहना चाहूंगी कि अगर हर कोई व्यक्ति ये समझ ले कि मुझे कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि समाज की मूलभूत इकाई व्यक्ति है, अगर व्यक्ति के भीतर वो बदलाव आ गया, लेकिन यहां परेशानी क्या हो जाती कि हर कोई दूसरों को बदलने में लगा। जो लीडर बैठा है उसको लगता है कि मुझे पूरे समाज को बदलना है, व्यक्ति जो बैठा है वो बोलता है कि मैं खुद क्यों करूं, लीडर बदलेंगे, और जैसा ढर्रा चल रहा है वैसा व्यक्ति बदल लेता है। लेकिन हर व्यक्ति ये छोटी सी जिम्मेदारी अपने आप के प्रति निभा ले कि मेरी दृष्टि क्या रहेगी, मैं क्या करूंगा, मैं किसी प्रकार के किसी विद्वेष में नहीं जाऊंगा कि फला एक कम्युनिटी जो कह रही है वो गलत है, या तुम जो कर रहे हो वो गलत है, मात्र मैं ही सही हूं। ये मैं ही सही हूं ही तो सबसे बड़ी गड़बड़ है भाई। मैं अपनी जगह पर सही हूं, यही महावीर का अनेकांत दर्शन है। मैं अपनी जगह पर सही हूं, आप अपनी जगह पर सही हैं, है ना। अगर हम इस दृष्टि से जीना सीख जाएं, तो जब मैं इस दृष्टि से जीना सीखूंगी तो ऑब्वियसली मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूं, तो आप मुझे क्यों डिस्टर्ब करेंगे। इसी तरह से हम परिवार में जीना सीख जाएं, हम अपने बच्चों को, क्योंकि हमारा दायित्व तो बनता है उन बच्चों के प्रति, हम उन बच्चों में के भीतर भी प्रेम भरें, उन्हें भी इस तरह से जीना सिखाएं। तो आप सोचिए अगर हर व्यक्ति ऐसा हो जाए तो अपने आप ही बदल जाएगा,
0: शांति रहेगी
1: अपने आप ही। वो जो लीडर है, वो जो व्यक्ति वहां बैठा है, उसको ये समझ में आ जाए कि भाई मैं जैसा करूंगा, मैं जैसा बोलूंगा, जो भाषा में बोलूंगा, मेरा ऑरा जैसा होगा, मैं जिस भाषा में व्यवहार करूंगा, मैं जैसे चलूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, करूंगा, उस पर मेरे सारे लोगों की नजर, एंड दे आर गोइंग टू इमिटेट मी, वो मेरी नकल करने वाले हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है और कुछ करने की जरूरत नहीं, जो करना है वो खुद पर करना है। जैसा आप देखिए ना, हम अक्सर जब लोग सवाल पूछते हैं कि हम बच्चों में संस्कार कैसे डालें, ये आजकल बड़ी चिंता का विषय है। हम बच्चों को मैं ये बोल रही हूँ, आप बात ही क्यों कर रहे हो, आप अपने आप को संस्कारित कर लो, आपके बच्चे स्वयमेव संस्कारित हो जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। अब आप खुद पूरे समय मोबाइल पर हो और आप चाहते हो आपका बच्चा मोबाइल यूज ना करे, आपके उस पर जो गाने चल रहे हैं, जब भी आप फ्री टाइम में बैठे हो आप गाने इतने वाहियात सुन रहे हो, वो बच्चा तो अकेला फिल्म हॉल जाता नहीं, वो बच्चा तो अपने आप से सोशल मीडिया यूज करता नहीं, उसके कानों में वो गाने पड़ रहे हैं, वो ऐसे ऐसे गानों पर जब ठुमके लगा रहा है तब आप ताली बन जाते हो, तब आप उसकी रील्स बनाकर पोस्ट कर रहे हो, तो क्या हुआ, बच्चे को ये समझ में आ गया कि दिस इज गुड, राइट,
0: वो अनुकरण ही करता,
1: वो अनुकरण करता है। यही हाल हमारे इस पूरे समाज का है। तो बच्चे को संस्कारित करने के लिए आपको, बिकॉज आप लीडर हो, आप उसके आइडल हो, आपको वो गाने सुनना बंद करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल से सारे गेम डिलीट करने पड़ेंगे, आप अपने मोबाइल पर जो देखोगे जो सुनोगे वो बच्चा आपको देख रहा है, आप अपने पत्नी से कैसे व्यवहार कर रहे हो या पति से क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो, भाषा यूज कर रहे हो, अपने मातहत जो है कर्मचारी उसके साथ कैसी भाषा यूज कर रहे हो, वही भाषा बच्चा अनुकरण करेगा, नकल करेगा. और यही हाल हमारे समाज और हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स का है. लेकिन यहाँ स्थितियाँ, हम उस पर क्यों चर्चा करें, वो विसंगतियां हैं. वो मंच पर कुछ और बोल रहा है और उसका जो घर है, जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग है. सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन बिल्कुल अलग है. अब बताइए, जो जनमानस है, जो सरल जनमानस है, अपने आप ही द्वंद्व में जाएगा ना कि ये सही है या ये सही है. कैसे कैसे वो बदलेगा? अच्छा चलिए, जो पब्लिक है उसने तो वो मोटिवेशनल भाषा सुनकर स्वयं को बदल लिया, लेकिन जो कर्मचारी उनके आसपास काम कर रहे हैं, वो तो उनका सच्चा रूप देख रहे हैं. वो ही उनकी इज्जत नहीं करेंगे, वो ही उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, तो समाज में तो ऐसे लोग ही जाकर सारी बात फैलाएंगे ना. तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा.
0: आप स्कूल में जाते हो, कॉलेजेस में लेक्चर देते हो, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, जिस ढंग से अभी पढ़ाई की जाती है, नई पॉलिसी आ गई है
1: जी,
0: तो क्या लगता है ये सही है?
1: जी, नई पॉलिसी में जो चीज़ें सामने आई है, देखा जाए तो वो वाकई एक सराहनीय प्रयास है. क्योंकि इतने सालों से हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, वो सिलेबस हमारा जो पाठ्यक्रम है, इतना आउटडेटेड हो गया है कि एक बच्चे को अच्छी तरह से पता है कि ये जो इंजीनियरिंग में मुझे पढ़ाया जा रहा है, ये आगे जब मैं नौकरी करने जाऊंगा, ये मेरे किसी काम नहीं आने वाला. एक फार्मेसी का बच्चा जो कोर्स पढ़ रहा है, वो जब आगे जाएगा वो किसी काम नहीं आएगा. और यही हाल आप देखिए हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम का भी है, है ना. बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अंकों के लिए पढ़ाया जा रहा है. वो चीज उसके भीतर काम आ रही है, नहीं आ रही है, समझ आ रही है, नहीं आ रही,
0: परीक्षार्थी बना रहे हैं,
1: वो सिर्फ परीक्षार्थी बना रहे हैं. और वो परीक्षार्थी उस बच्चे को इस जीवन को जीना कैसे, वो समझ ही नहीं आ रहा है. तो अभी जो ये NAP के कुछ सिस्टम सामने आए हैं, कारण ये हो गया कि हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल बोर्ड्स इतने आ गए और उनका जो पाठ्यक्रम है वो बहुत प्रायोगिक है. वो बच्चों को अलग अलग दिशा में खुद को जानने का अवसर देता है, खोजने का अवसर देता है. साथ ही जो वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, उसके साथ उसको एक तरह से मैं कहूँगी कि उसकी चाल के साथ उसको एक गति में रखता है. अब जो भारतीय सिस्टम था, वो अंकों के आधार पर इतना ज़्यादा, आप अगर मैं सीधी सी बात कहूँ तो आप हमारा इतिहास उठा कर देखिए, CBSE का. मैं खुद जब स्कूल से बाहर निकल गई, इनफैक्ट दीक्षा के बाद मुझे समझ में आया कि हमने जो आज तक इतिहास हमको पढ़ाया गया, वो तो केवल दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ाया गया,
0: मुगलों का.
1: और केवल मुगलों का ही नहीं, देखिए लगातार जो इतिहास, अगर मैं बैक में जाऊं तो बहुत मेरे अंदर कुंठा थी, बहुत गुस्सा भर गया था इतिहास पढ़ते हुए. इसलिए मैं शायद लगभग सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके पास होती थी. जहां जाओ हम हारे, जहां जाओ हम हारे. यहां तक कि स्लेव डायनेस्टी आई और वो भी हमको हराकर हम पर राज करके चली गई. अंग्रेज आए, हम पर राज करके चले गए. मुगल आए, राज करके चले गए. अफगानी आए, राज करके चले गए. तो क्या हम भारतीय इतने गए गुजरे? हमारा सेल्फ एस्टीम खत्म कर दिया गया. आज जाके पता चला है कि हमारी गौरवशाली जो भारतीय इतिहास है, वो तो हमारे बच्चों तक पहुंचता ही नहीं है. भाई साहब, आप देखिए, पूरा की पूरा मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य दक्षिण भारत का, जहां पर किसी ने कब्जा नहीं किया, उन पर कोई अटैक्स नहीं हुए, वो तो पहुंचा ही नहीं हमारे बच्चों तक. उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे पास कितनी गहन शिल्प कला, विज्ञान. आप मंदिर देखिए, वो विज्ञान कहाँ था? और हमें क्या सिखाया जा रहा है कि भारतीय ये जो मंदिर बने हुए, ये स्टोन एज के हैं. तब विज्ञान नहीं विकसित था. तो एक बच्चे को जब बड़ा किया जा रहा था ना, वो इतिहास पढ़ के और वो सारा सिस्टम, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ, एक बहुत हीन भावना के साथ हम बड़े हुए कि हम भारतीय बड़े गए गुजरे हैं, हमारे अंदर कुछ है ही नहीं. हर कोई हमको नौकरी बनाना चाहता है, हम तो नौकर बनने के लिए ही पैदा हुए. और आज भी वही चीज चल रही है, उसको बदलने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये तो हमने खुद ने अपने स्तर पर आकर इतिहास को खोजा, खंगाला, तब समझ में आया वाव क्या हमारा गौरवशाली इतिहास है, वो इतिहास पहुंच ही नहीं रहा। तो ये बदलाव तो मैं कहूंगी आवश्यक है, और सरकार भी शायद इसीलिए जागी क्योंकि हमारे यहाँ पर ये सारे इंटरनेशनल बोर्ड्स अपना जाल फैला चुके हैं और इतने अधिक बोर्ड्स आ गए हैं, और हमारे यहाँ का सारा जो ज्ञान कह लो या जो योग्यता कह लो वो जाकर बाहरी देशों में काम कर रही है। यहाँ के IITians, IIMs बाहर इतने ज्यादा मांग में है, डिमांड पर है कि उनको वो छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन हमारे बच्चे भाग रहे हैं बाहर। तो सरकार को, आई सपोज सरकार के साथ साथ मेरे ख्याल से हर पेरेंट का, हर अभिभावक का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे के इस अध्ययन यात्रा में उसकी सहयोगी बने, स्कूल भेजकर और ट्यूशन भेजकर खत्म मत कीजिए।
0: पहले हर घर में दादाजी दादा होते थे, ग्रैंडफादर्स होते,
1: वो अनुभव बांटते थे। मुझे तो अभी अभी सूचना मिली आप ही के शहर में कि पहले तो हम कहते थे 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, फिर धीरे धीरे वो 4 साल उम्र हुई, फिर 3 साल हुई, अभी मुझे पता चला कि यहाँ पर 1.5 साल के बच्चे के लिए भी स्कूल खुल गई है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो फिर आपके, जब आप 1.5 साल का बच्चा स्कूल जाएगा तो संस्कृति कहाँ जाएगी, आपकी पारिवारिक जो मूल्य है, आपके संस्कृति के मूल्य है, वो स्कूल थोड़ी देगी, वो तो उसको एक सेट पैटर्न में बनाकर निकालेगी। तो इन मूल्यों की फिर हम क्यों बात कर रहे हैं, फिर हम क्यों कह रहे हैं हमारे बच्चों में हम संस्कार कैसे डालें, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक अभिभावक को तैयार ही नहीं किया जाता कि हाँ बेटा अब तुम माता पिता की भूमिका में आ गए हो। हम बचपन से बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, बड़ा हो गया ये शादी लायक उम्र हो गई, शादी कर दो। शादी भी आजकल, विवाह संस्कार तो गायब हो गया है, मैरिज सेरेमनी गायब हो गई है, जो बच गई है वो वेडिंग इवेंट्स बच गए हैं। तो ये सब चीजें हमारे शिक्षा व्यवस्था में ही होनी चाहिए, जहां पर हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति के इन सारे मूल्यों को एक तरह से पाठ्यक्रम का हिस्सा बना जाए, और पाठ्यक्रम का हिस्सा भी सिर्फ शाब्दिक रूप पर नहीं, व्यवहारिक रूप पर, प्रायोगिक रूप पर, उन त्योहारों के रूप में, उन सारे संस्कारों के रूप में, कि क्या होता है एक उपनयन संस्कार, क्या होता है एक गृहस्थ का संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, बच्चों का जो अन्न प्राशन संस्कार होता था वो शिक्षा पर जाने से पहले संस्कार होता था, वो सब गायब हो गए। हम सब झूल रहे हैं पाश्चात्य संस्कृति और वर्तमान,
0: और सोशल मीडिया से तो और गड़बड़ मच गई है, क्या सही है
1: गड़बड़
0: क्या नहीं
1: है। सही भी बहुत कुछ हो रहा है वहाँ,
0: लेकिन
1: पर
0: पता नहीं चलता कि क्या सही है
1: अगेन,
0: क्या गलत है।
1: आप देखिए, इस पर मैं मीडिया और इंटरनेट को दोष नहीं दूंगी, आप जो सर्च करोगे उसी के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप सर्च करो उसमें इतिहास, आपको सारे इतिहास के मिलेंगे, आप सर्च करो अलग अलग संस्कार, आपको अलग अलग संस्कारों के मिलेंगे। उल्टा मैं तो कहूंगी ये एक बूंद भी है, अब अमृत भी है विष भी है, चॉइस इज योर्स, निर्णय आपका है, आप क्या ले रहे हो,
0: जो आपको मिलनी चाहिए वो,
1: और वो दिशा परिवार से ही मिलेगी भाई साहब, वो कोई और नहीं दे सकता, कोई पाठ्यक्रम, कोई समाज नहीं दे सकता। लीडर, पॉलिटिक्स, ये तो कहते हैं ना हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं, तो ये परिवारों से ही आएगा, परिवारों को ही समझना होगा। लेकिन हम सब अपनी कुंठाएं अगली पीढ़ी पर आरोपित करते रहते हैं, और इस आरोपणा के दौर में चला जा रहा है सब कुछ।
0: मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ रही है कोरोना के बाद, तो बहुत हर घर में एक पेशेंट बन गया। कॉम्पिटिशन है, उसके साथ फ्रस्ट्रेशन आता है, कई बार लोग निराश हो जाते हैं, सुसाइड करते हैं, बहुत सारे क्राइम के पीछे भी ये कारण होता है, फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही है। धर्म इसमें कैसे हमें मदद कर सकेगा?
1: धर्म इस तरह से मदद कर पाएगा कि पहले तो धर्म हमारी जीवनचर्या का हिस्सा बने, मतलब धर्म को हम ये धार्मिक क्रिया है कहकर
0: कर्मकांड
1: तक सीमित नहीं है, वो ट्रेडिशंस या रिचुअल्स तक सीमित नहीं है कि हमने कुछ परिपाटी फॉलो कर ली, सुबह मंदिर चले गए, पूजा कर ली, जैन है तो हमने एक सामायिक कर ली 1 घंटा, और फिर हम 23 घंटे अपनी जिंदगी जिएंगे। तब तो धर्म आपको कोई भी समाधान नहीं दे सकता। हम धर्म को उन शब्दों की गहराई में जाकर जब तक अपनी जीवनचर्या में नहीं उतारेंगे, और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि सारे धर्म गुरुओं को उस धर्म की जो समझ देनी है उसको आज की व्यावहारिक अभिव्यक्ति के अनुसार भाषा को बदलना होगा, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच लाना होगा। अब मैं बोलूं, एक उदाहरण दूंगी कि हमें प्रतिक्रमण करना है, प्रतिक्रमण का ये प्राकृत पाठ है, हमने पाठ याद कर लिया, आपने एग्जाम दे दिया, आप उसमें फर्स्ट आ गए, फिर आप प्रतिक्रमण शाम को बैठकर आपने वो पाठ बोल लिया, कुछ क्रियाएं कर ली, और भाई मेरे दिन भर के किए गए पापों को मैं विसर्जित करता हूं। भाई तुमको पता ही नहीं है तुमने पाप क्या किए, पहले आइडेंटिफाई तो करो, पहले जानो तो सही कि तुमने पाप क्या किया। वो जान पाओगे कि ये पाप हुआ मुझसे, स्वीकार करो, तब तो आप उसे खुद से अलग कर पाओगे। तो पहले ये हमारी जीवनचर्या में आए। दूसरा, यहां पर अगेन अभिभावकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि हमारे यहां पर एक्चुअली जो हो गया है, संवाद खत्म हो गया है, आपसी संवाद जो है वो खत्म हो गया है, और हम हर चीज के लिए इस सो कॉल्ड सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट हो गए हैं। इतने ज्यादा शंकाएं हमारे भीतर भर गई है कि सबका समाधान हम सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं। मानसिक, एक तो आपसी संवाद खत्म हो गया, दूसरा शारीरिक खेल बंद हो गए, क्रियाएं बंद हो गई, और ये संवाद केवल परिवार के सदस्यों में नहीं, समाज के सदस्यों में भी खत्म हो गया। हम देखें, पहले बच्चे बाहर खेलने जाते थे, खेलते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, फिजिकल एनर्जी बाहर ड्रेन आउट हो जाती थी। अभी फिजिकल एनर्जी, जो शारीरिक ऊर्जा है, वो अंदर अलग अलग जगह पर कैद हो रही है। अब ये ही कारण है कि मनोशारीरिक रोग के साथ साथ मानसिक रोग डेवलप हो रहे हैं। अगर एक व्यक्ति जिसमें बहुत एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है, वो डेली 2 घंटा फुटबॉल खेल लेगा, वॉलीबॉल खेल लेगा, वो जितना भी उसका गुस्सा है, एग्रेशन है, वो सब डाइल्यूट हो जाएगा, वो विसर्जित हो जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति दिन भर घर में रहकर सुबह 9 से रात के 10 की जॉब ऑनलाइन घर पे बैठा बैठा करेगा, किसी ह्यूमन के साथ, किसी मानव के साथ संवाद ही नहीं करेगा, तो वो जो सारी ऊर्जा है वो क्या होगी, मानस में भरेगी, और जब मानस में भरेगी तो वो आपस में ही द्वंद्व होगा,
0: प्रेशर आ जाए।
1: वो प्रेशर होगा, वो द्वंद्व होगा, अब वो ऊर्जा कहीं बाहर निकल ही नहीं रही है। तो भैया, ऊर्जा तो आप भोजन बराबर कर रहे हो, आप अपने सो कॉल्ड अध्यात्म में भी पूरे एक्टिव हो, तो ऊर्जा तो आपने क्रिएट कर ली, अब उस ऊर्जा को यूज करना नहीं आया, चैनलाइज करना नहीं आया, तो वो ऊर्जा तो बीमारियां बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। मैं ये कहूंगी कि जिनको भी मानसिक रोग है ना, उनको रोजाना के 1-1.5 घंटा आप प्लेग्राउंड पर छोड़ दीजिए, उनको बोलिए इस मिट्टी में लोटिए, चिल्लाइए, कूदिए, बॉल से खेलिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन शारीरिक श्रम कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, और ऐसा मेरा अनुभव रहा है, 50% मानसिक रोग कम हो जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: और ये मेरा अनुभव है। हमने बाइपोलर के मरीज, ओसीडी के मरीज, मल्टीपल पर्सनालिटी के और कई एंजाइटी के, गुस्से के मरीजों को हमने ये छोटी मोटी चीज़ों से ठीक किया। हम आजकल हर चीज़ इंस्टेंट चाहते हैं। आप देखिए, पहले नहाना भी एक पूरा प्रक्रिया होती थी। तेल लगाया जाता था, मसाज किया जाता था, ब्लड सर्कुलेशन बराबर हो गया, फिर उसके बाद पानी को या आपके सर पे डाला जाता है, ये आपकी ऊर्जा के केंद्र है। जब आप पानी यहाँ पर डालेंगे तो आपका पूरा जो आएगा वो क्या होगा, शांत होता चला जाएगा। ये नहाना कैसे, इसी तरह भोजन कैसे करना, अभी हम हर चीज फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मैं तो कहूंगी कि हमारा ये पिछले 5 सालों से मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूं, और हमारा ये प्रयास है कि मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं देना है अध्यात्म या धर्म के नाम पर, ये चीजों पर हम थोड़ा ध्यान देना शुरू करें। हम रात्रि को नींद में कैसे प्रवेश करते हैं, बिल्कुल वैसे प्रवेश कीजिए जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं साधना के लिए। आप देखिए, नींद अगर स्वस्थ हुई तो व्यक्ति की मानसिक बीमारियां दूर हो गई। अब उसके बाद सुबह जागना कैसे, उस जागने के तुरंत बाद क्या करना। अब देखिए, अगर आप सही तरह से जागे तो आपकी दिनचर्या संतुलित हो जाएगी, फिर वापस आप नींद में जाएंगे, उसी दौरान आपको नहाना कैसे, आपको खाना कैसे खाना, इन चीजों पर आप ध्यान दे देंगे ना, मानसिक बीमारियों में गिरावट आना निश्चित है। हमने पूरा ऐसा एक कोर्स डिजाइन किया है, छोटे बच्चे 4 साल के 5 साल के वहां से लगाकर 12वीं कक्षा तक, कैसे ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में प्रवेश करें, सहन करो सहन करो, सहन कैसे करें, उसका बेसिक स्टेप क्या है, प्रैक्टिकल स्टेप क्या है, हिंसा मत करो हिंसा मत करो, लेकिन जब गुस्सा है तब क्या करो,
0: अल्टरनेटिव क्या है, पर्याय क्या है,
1: करना क्या है, मत करो ये तो हम सिखाते आ रहे हैं, करना क्या है, इसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करते। तो हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करें और ये प्रैक्टिस में लाया जाए, चमत्कार रातों रात नहीं होते, ये इसके लिए प्रयास करना होगा। हम देखते हैं काउंसलर्स, काउंसलिंग के नाम पर कई बार हमारे यहाँ पर जो काउंसलिंग्स चलती भी है, आई एम सॉरी टू से, बट हमारे जो एकेडमिक सिस्टम है, आप बीए का कोर्स उठाकर देखिए, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसमें जो साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है उसमें से 70% वेस्टर्न साइकोलॉजी है।
0: वही एग्जांपल्स दिए जाते हैं,
1: वही राइटर्स वही है। अब आप देखिए पाश्चात्य जो संस्कृति है वो एकल संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है वो सामाजिक संस्कृति है, वो कलेक्टिव परिवार का कल्चर है, वहां इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। अब वहां की साइकोलॉजी आप, मनोचिकित्सा आप, यहाँ के व्यक्ति पर आप वो टेस्ट, वो थ्योरीज डालोगे, कैसे काम करेगा? लेकिन ये हो रहा है आज, काउंसलिंग के नाम पर हम सारी वेस्टर्न थ्योरीज ला रहे हैं। अरे भाई, ये बच्चा जो पला बड़ा है इसका परिवेश तो देखो, ये जो 20 साल का युवक आपके सामने खड़ा है ये भारतीय परिवेश में पला बड़ा है, ये पाश्चात्य परिवेश में नहीं पला बड़ा है, तो इसकी बीमारी और इसकी प्रॉब्लम की जड़ अलग है, उसकी जड़ अलग है। अब जड़ तो भारतीय परिवेश की, और शाखाओं पर आप काम करोगे पाश्चात्य परिवेश से, इसलिए काउंसलिंग से भी हल कम निकल रहे हैं।
0: आहार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, आहार में तो बहुत बदलाव आ गए, टाइमिंग्स बदल गए हमारा अलग अलग, यानी अभी बहुत सारे लोग नॉनवेज भी खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, उसका भी असर हो रहा है हमारे मानसिक विचारों पे। तो सही आहार, संतुलित आहार, योग्य आहार क्या होना चाहिए?
1: मैं बहुत इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी। आहार प्राकृतिक हो, और प्राकृतिक को भी मैं कैसे कहूंगी कि आप जिस भूगोल में हो, आप जिस ज्योग्राफी में जन्मे हो, पले बड़े हो, वहां का जो स्टेपल डाइट है, वहां जो उगने वाला धान अनाज फल फ्रूट सब्जी है, आप उसे लीजिए, पहली चीज। दूसरी, मैं बहुत इन शॉर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ, सरल तरीके से। दूसरा, जब भूख लगे तब खाओ, भूख लगे तब खाओ, ये दो चीजें समझ में आ गई तो बाकी सारे उत्तर इसी के इर्द गिर्द है। अब देखिए हमारे शरीर की बनावट, जो मांसभोजी जानवर है उनकी जो बड़ी आंत होती है वो इतनी सी होती है, छोटी आंत इतनी सी है, क्यों? क्योंकि उनको भोजन पचाने की जरूरत नहीं है। हम कौन है? मानव। हमारी आंत कितनी बड़ी है? हमारे जो दांत है वो मांसभोजी के लिए है? नहीं। ये किस भोजन के लिए है? चबाने के लिए, मोलर्स और प्रीमोलर्स है, यानी वो भोजन को चबाने के लिए, यानी वो वेजिटेटिव डाइट के लिए है, राइट? प्राकृतिक आहार जो पौधों से मिलता है, जो वनस्पति जगत से मिलता है, ये उस आहार के लिए। तो हम इसको भोजन भी वही दें जो जिसकी पचाने की क्षमता इसमें है, पहली चीज ये। दूसरा, जब हम भूगोल के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हम रह तो रहे हैं दक्षिण भारत में और हम भोजन चाहते हैं उत्तर भारत का या वेस्टर्न का, तो गड़बड़ी होगा ना। हमारे यहाँ पर बहुतायत में ताजा भोजन मिल रहा है, तो हमारा जो शरीर है वो उसी लायक है क्योंकि उसका तापमान है। अब बाहर उन लोगों की मजबूरी थी कि वहां पर भोजन मिलता ही नहीं है, वहां पर सब्जियां उगती नहीं है, इसलिए उन्होंने शायद प्राणी जगत को अपना आहार बनाया होगा, लेकिन यहाँ हम स्वाद के लिए बना रहे हैं, स्वाद भी नहीं सिर्फ जिद के लिए, क्योंकि वो परंपरा से चला आ रहा है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी लोगों से कि आप जब एक जीव को मारते हो तो उसमें जीवन तो है, जीवन यानी उसमें फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, वो इनसेंसिटिव नहीं है, उसमें संवेदना नहीं है, ऐसा नहीं है। अब जब उसके प्राणों का हनन किया जा रहा है तो उसे पीड़ा होगी,
0: बिल्कुल,
1: उसके भीतर गुस्सा होगा, उसके भीतर आक्रोश होगा, और जैसे ही उसको मारा गया वो तत्व वहां पर स्टोर हो गया, आप उस तत्व को अपने अंदर लोगे तो क्या आपके भीतर गुस्सा नहीं पनपेगा, क्या आपके भीतर क्रोध नहीं पनपेगा, क्या आपके भीतर एंग्जाइटी नहीं पनपेगी? दूसरी चीज, आपको वो पाचन होगा ही नहीं, आपके सारे चीजों में बदलाव आएगा। जब आप वनस्पति का सेवन करते हो, और हमारे यहाँ पर वनस्पति का सेवन करने का एक पूरा तरीका बताया गया, हम उन चीजों को भूल गए हैं। हे वनस्पति, आप जो मुझे सहयोग कर रहे हो उसके लिए आपका आभार, आपके इस सहयोग से, आपकी इस कुर्बानी से मेरे जीवन को ऊर्जा मिल रही है, तो जिस तरह मुझे ये ऊर्जा मिल रही है आपका भी जीवन सुखमय हो। और वनस्पति जगत आप देखिए स्वयं अपना पका हुआ आहार छोड़ देता है, वो छोड़ देता है, वो वापस उसको ग्रहण नहीं करता है, जबकि पशु स्वयं को छोड़ नहीं रहा है, वो अपने बच्चे आपको नहीं दे रहा है कि मुझे खा लो, लेकिन वनस्पति ऐसा करे। कई लोग जैसे अतिवादिता पे चले जाते हैं कि वो भी तो जीव है, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, उसका फल पका उसने छोड़ दिया कि आप काम लो, आप उसे अहोभाव के साथ ग्रहण कीजिए। दूसरी चीज, जब भूख लगे तब भोजन कीजिए, हम समय के साथ चल रहे हैं तो जितनी हमको आवश्यकता भी नहीं है उतना हम लिए जा रहे हैं, हमारे मतलब टेस्ट के कारण लिए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज क्यों नहीं हो। हर वनस्पति का हमारे शरीर में एक उपयोग है, एक रीजन है। हम इतने ज्यादा बेहोश होकर खा रहे हैं कि उस भोजन का हमारे शरीर पर प्रभाव क्या पड़ रहा है हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। आप देखिए राजस्थान में अगर आप जाएंगे या आप हिमालयाज की तरफ जाएंगे उत्तर भारत में, वहाँ मौसम इतना तेज ठंडा है कि जब तक आप वो भोजन नहीं लोगे जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है और तुरंत स्टार्च से आपको एनर्जी मिलेगी, तब तक आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। राजस्थान का व्यक्ति है वो अगर गर्मी में नहीं खाएगा कुछ ऐसी चीज़ें तो उसको लू लग जाएगी। तो आपको भोजन की प्रकृति देखनी होगी, स्वयं की प्रकृति देखनी होगी और इनको बैलेंस करके चलना होगा। आप धर्म के नाम पर या अपने स्वाद के नाम पर कुछ चीजों को ऐड कर दोगे और कुछ चीजों को लेस कर दोगे, नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा भोजन उपलब्ध है आपके लिए और फिर कैसे जिया जाए।
0: सिर्फ रुचि के लिए खाना,
1: सिर्फ रुचि के लिए, सिर्फ स्वाद के लिए और सिर्फ घड़ी के पहियों के हिसाब से खाया जाए वो सही नहीं है।
0: अभी आगे जो हमारे जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग आगे का पर्यावरण का बहुत बड़ा एक प्रश्न उपस्थित हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जो हो रहा है उससे भी बहुत सारी बातें बदलने वाली है, और तीसरा है कि युद्ध स्थिति जो अलग अलग देशों में अभी क्राइसिस चल रहा है, कभी न कभी भारत भी उसमें आ जाएगा, तो हमको तो नुकसान भुगतना ही पड़ेगा चाहे युद्ध दूसरी जगह चल रहा हो, इसको कैसे आप देखते हो?
1: जहाँ तक मैं पहली बात करूँ ग्लोबल वार्मिंग की, तो देखिए ये आज से नहीं शुरू हुई, आज तो हम इसके परिणाम देख रहे हैं, है ना। जब जब व्यक्ति अपनी प्रकृति को छोड़कर अपने कंफर्ट्स को चुनेगा तब तब ये स्थितियाँ आएगी, है ना। आप एक जंगल में से मनुष्य को माइनस कर दीजिए, है ना, जंगल पूरा मनुष्य ने खराब कर दिया है। ये एक एग्जाम्पल है चेर्नोबिल में, अगर याद हुआ हो तो बहुत साल पहले न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था और तब वहाँ ऐसी स्थिति हो गई कि वहाँ किसी जीव मतलब वहाँ जीवन बचा ही नहीं, और वैज्ञानिक करीब 15-20 साल तक वहां मानव ने प्रवेश ही नहीं किया। हैरान हो गए वैज्ञानिक कि वहां पर अपने आप ही इतने जीव जंतु अपने आप बढ़ गए, वो पूरा जंगल वापस अपने कहते ना एक प्राकृतिक बैलेंस में आ गया, एक साइकिल में आ गया। क्यों? क्योंकि वहां मनुष्य नहीं था, प्रकृति थी। तो प्रकृति की तरह और प्राकृतिक रूप से अगर हम जिएंगे तो ये सारी समस्याएं आएगी नहीं। तो हमें सबसे बड़ी चीज हर व्यक्ति को डालना होगा। अब हम ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा कर रहे हैं एसी में बैठकर, यू नो, ये त्रासदी है। हम चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण को मीन्स नुकसान की एसी में बैठकर, हम ट्रैवल कर रहे हैं अंधाधुंध, हमें पता ही नहीं क्यों, क्योंकि हमें सुख सुविधा चाहिए। यहाँ तक कि हम बच्चों की इम्यूनिटी नहीं डेवलप होने दे रहे हैं, हम बच्चों की स्कूल में पहले ये देख रहे हैं यहाँ एसी है कि नहीं, जबकि छोटा बच्चा, उसको एसी नहीं चाहिए। वो मस्ती से खेल कूद कर मिट्टी में बड़ा होगा, स्ट्रांग बनेगा, इम्यूनिटी लेवल डेवलप होगा। फिर सुविधाएं प्लास्टिक के नाम पर, मैं अभी रिसेंटली, मैं इसलिए चर्चा कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इस बारे में सोच रहे ही नहीं है। मैं अभी फरवरी में, मुझे एक जगह बुलाया गया जहाँ पर जवाई क्षेत्र को संरक्षित करने की बात थी। उस बंदे ने टॉप मोस्ट लोगों को बुलाया, फिल्म अभिनेत्री भी आई, सोनम वांगचुक भी आए, और भी बहुत लोगों को बुलाया, और बिल्कुल साधारण तरीके से मंदिर के परिसर को लेकर बाहर एक सिंपल कुर्सियां लगा दी, टेबल, और कुर्सियां भी किसकी बनी हुई, जो प्लास्टिक वेस्ट आता है ना उससे रिसाइकल करके जो कुर्सियां बनी।
0: हाँ।
1: कोई तामझाम नहीं, कोई एसी नहीं, कोई कूलर नहीं, चूंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी तो दूर कहीं पंखे लगा दिए गए। पानी में आपको कोई प्लास्टिक बॉटल्स नहीं, सब अपनी अपनी बॉटलें कैरी कर रहे हैं, एक सिंगल प्लास्टिक नहीं, और वाकई उससे कुछ निकल के आए, कुछ नियम। तो हर व्यक्ति को, और खासकर ये सो कॉल्ड जो ऐसे संस्थाएं काम कर रही है, उनको ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। हम आजकल सारा काम जो कर रहे हैं और चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं सो कॉल्ड, वो सिर्फ अखबारों में और सोशल मीडिया में आने पर। जैन दर्शन यहाँ पर षटकाय आभार की बात करता है, है ना? लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि हम ये षटकाय जीवन की बात करते हैं, आभार की बात करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोग्राम्स एंड ऑल, हम बात करते हैं महावीर की अहिंसा की, कि महावीर ने अहिंसा का ज्ञान दिया, और कोई भी महावीर जयंती का कार्यक्रम बिना प्लास्टिक के, सिंगल यूज प्लास्टिक के, बिना बैनर्स के पूरा नहीं होता। मात्र कुछ लोग, मैं तो कह रही हूँ सिर्फ जैन समुदाय ये कर ले कि आज से हम महावीर के नाम का जो प्रोग्राम करेंगे उसमें प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे, उसमें हम इन बैनर्स का प्रयोग नहीं करेंगे, हम गाड़ियों का, मतलब अनावश्यक जो साधन है भाई, जैसे माइक चाहिए 10,000 की पब्लिक के लिए, उपयोग में लाओ, थोड़ा सहन करने दो। लेकिन हम इतना अधिक व्यय कर रहे हैं और उससे हमारे पर्यावरण पर नुकसान हो रहा है, इसकी हम चर्चा नहीं कर। तो अगर हम अहिंसा की बात करें तो अहिंसा केवल विचार का या चिंतन का या सेमिनार का मुद्दा नहीं है, जीवन में कहाँ है। फिर आप बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के बाद आपने कहा एआई का। अभी एआई में भी देखिए सिंपल सी बात है, चूंकि मैंने कहा ना हमने प्रकृति के साथ संवाद बंद कर दिया तो हम अटक गए। अब ये एआई नो डाउट ये इसने आपके काम बहुत आसान किए, लेकिन नाम ही आर्टिफिशियल है, मैं क्या कहूँ इससे आगे, है ना? तो हम अप्राकृतिक रूप से जीने की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर है हम प्रकृति की ओर लौट आए, इनको साधनों की तरह उपयोग में लाएं, सुविधाओं की तरह नहीं। इंसानों जितना मान सम्मान ना देकर जो इंसान है, जीव जगत है, पूरा प्राणी जगत है, अगर हम उनके साथ कम्युनिकेट करना सीख जाएं तो शायद इसको हम एक ऐसे सहयोगी के रूप में काम ले सकते हैं जो संपूर्ण प्राणी जगत और वनस्पति जगत के लिए सहयोगी हो सकता है। लेकिन एआई क्या कर रहा है, अगेन हमारी क्षमता को कम कर रहा है, और एआई उतना ही काम करेगा जितना डेटा फीड है। अब हो क्या गया है कि पूरे विश्व का डेटा फीड हो गया है और उसके इन्यूमरेबल परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस बन गए हैं कि हमें लगता है ये तो इंसान से आगे चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी उसको हैंडल करने वाला इंसान है।
0: हाँ, जब तक इंसान सोचने वाला है।

हर पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुम सा।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: खाने ही बार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

हर पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के गोले

0: अखिल वार है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।